0: Radio 2098.5 FM Community Program
1: Samajik Hindi Kaikim Durban Akash 2098.5 FM
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: Swagat hai Durban Hindi Karyakram mein. Aap sunenge samachar, vichar, sangeet aur samajik suchnaye.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: Divar. युगा 5026 विक्रम संवत 2083 कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 12 जुलाई 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को पूनम की नमस्ते। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। पीएम मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर थे। भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा भारत इंडोनेशिया की सामरिक साझेदारी को नई दिशा देगी। इस यात्रा का फोकस व्यापार, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और ASEAN के साथ सहयोग है। इसके उपरांत पीएम मोदी मेलबर्न पहुंचे, जहां उनके बड़ी ही गर्मजोशी से 30,000 भारतीयों और प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार, निवेश और सामरिक साझेदारी पर बातचीत करना था। यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली है। इसके उपरांत प्राइम मिनिस्टर पहुंचे न्यूजीलैंड। लगभग 40 साल के बाद किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा की गई थी। उसका उद्देश्य भारत न्यूजीलैंड संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना है। अप्रैल में हुए भारत एनजेड मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की गई। इससे भारत के 1.4 मिलियन लोगों का बाजार न्यूजीलैंड के लिए खुल गया, जिससे नौकरियां और निर्यात बढ़ने की संभावना है। इस यात्रा का फोकस व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और लोगों के आपसी संबंधों को बनाए रखना है। न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर ने यह घोषणा की थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत ही अहम है। एक खुद दुखद घटना में वियतनाम घूमने गए भारतीय पर्यटकों के साथ बड़ा हादसा हुआ। हनोई में भारतीय दूतावास ने बताया कि 11 जुलाई को वियतनाम के फू केचक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट पलट गई। इस हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 32 घायल हो गए, जिनमें से 21 को बचाकर अस्पताल ले गया गया है। भारत में 2047 तक खुद को विकसित देशों की लिस्ट में लाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने पहली बार 2022 के 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प रखा था। तब से मोदी सरकार देश को विकसित बनाने के लिए कार्यरत है। 21 साल बाद एक विकसित देश की कैटेगरी में आने के लिए भारत को क्या करना होगा? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अभी सारी दुनिया में सिर्फ 37 देश ही विकसित की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से 31 देश सिर्फ यूरोप के हैं। एशिया में केवल 2 देश हैं जिन्हें विकसित माना जाता है, ये है साउथ कोरिया और जापान। भारत की अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, लेकिन यहाँ की आबादी इतनी है कि प्रति व्यक्ति कमाई में भारत कई देशों से पिछड़ जाता है। वर्ल्ड बैंक ने कई सालों से भारत को लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाले देशों में लिस्ट किया हुआ है। भारत की सालाना प्रति 2760 डॉलर यानी लगभग 2 लाख रुपए है। आज के दौर में जब ग्लोबल वार्मिंग और बिजली की खपत एक बड़ी समस्या बन चुकी है, आमेर फोर्ट का सुख निवास दुनिया के लिए इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन प्रमाण है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर फोर्ट में एक ऐसा शाही कमरा है जहां बिना बिजली और आधुनिक मशीनरी के प्राकृतिक रूप से एसी जैसी ठंडी हवा मिलती है। आज से 400 साल पहले राजपूत वास्तुकारों ने पीले, गुलाबी और बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से इस किले को तैयार किया था। इसका डिजाइन इस तरह से किया गया था कि बाहर चाहे कितनी भी लू चल रही हो, परंतु अंदर बैठे राजा को शिमला जैसी ठंडी हवा मिलेगी। इसका निर्माण कछावा शासन राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था। महल की छत पर बने विशाल टैंक है और नीचे स्थित माबाता सरोवर बनाया गया। इसके बाद पश्चिमी हवाओं के रुख को ध्यान में रखते हुए पानी को संगमरमर की बारीक नालियों से झरने के रूप में नीचे गिराया गया। जब गर्म हवा इस पानी से गुजरती थी तो वह तुरंत ठंडी हो जाती थी। पहले पेट्रोल पंप्स पर E10 पेट्रोल मिल रहा था तब कोई बवाल नहीं मचा, लेकिन जब से E20 यानी 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल शुरू हुआ तब से आए दिन हंगामे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है कि पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाकर बेचा जा रहा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARA और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से टेस्टिंग के बाद ही E20 को मंजूरी मिली थी। अयोध्या के राम मंदिर में VIP दर्शन पास की व्यवस्था एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। राम मंदिर के चंदा और चढ़ावा से जुड़े विवाद के बीच यह जानकारी सामने आई है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों के VIP पास जारी करने के अधिकार छीन लिए गए हैं। इसके बाद जनता से में यह उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर राम मंदिर में VIP पास कैसे बनता है और इसके लिए कौन अधिकृत है। ट्रस्ट पदाधिकारियों के अलावा अयोध्या के जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, DIG और कमिश्नर को यह पास जारी करने की सुविधा है। यह अधिकारी 200 लोगों के लिए पास जारी कर सकते हैं, जबकि ट्रस्ट के लिए ऐसी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। फिल्मी बातों में 4,000 करोड़ के महंगे बजट से बनी रामायण का यह धार्मिक फिल्म निमित्त सबसे बड़ी सिनेमैटिक स्पेक्टिकल में से एक होगी। रणबीर कपूर ने राम का अभिनय किया है और इसकी पहली झलक रिलीज होने के साथ ही मेकर्स ने दर्शकों को भारत के सबसे सदाबहार महाकाव्यों में से एक की विरासत की एक झलक दिखाई। मेकर्स ने 24 जुलाई 2026 को इस ट्रेलर का रिलीज करने की घोषणा की है और यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस भी इसे देख सकेगी। वाणिज्य समाचारों में दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 1,32,330 रुपए है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलियन डॉलर 66 रुपए 16 पैसे, अमेरिकन डॉलर 95 रुपए 15 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए।
3: श्रोताओ, आज आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरे साथ यतिंद्र गुप्ता, और आज हमारे मेहमान हैं शिष्य झा जी, जैसे कि मैंने अपने संदेश में लिखा था। शिष्य जी, दर्पण रेडियो में आपका स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद यतिंद्र जी, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
3: आज का सारा प्रोग्राम श्रोताओं थोड़ा सा अजीब होने वाला है, अभी से मैंने बता दिया। आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और बताइए मुझे कि आप मिथिला के बारे में कितना जानते हैं। हमारे शिशिर जी जो है ना, मुझे खुद नहीं मालूम था, तो इसलिए जब हमारी बातचीत हुई तो मालूम पड़ा कि कुछ नहीं जानते हैं। तो जिसकी स्क्रिप्ट भी अलग है, ये भी मुझे नहीं, मैं समझता था कि ये हिंदी का ही एक जैसे भोजपुरी में लिखते हैं बोलते हैं इस तरीके का है, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आज हम मिथिला के बारे में बात करेंगे। और श्रोताओं, एक और बात हम करना चाहते हैं, जितना टैक्स और SMSF के बारे में चेंजेज हुए हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग हम चाहते हैं कि इसका सेगमेंट शुरू करेंगे हम दर्पण रेडियो पे, जिसका नाम होगा SMSF एंड टैक्स। उसकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी हम उसको आंसर करेंगे, और प्रैक्टिकल जो भी सोल्यूशन भी होते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो उसकी शुरुआत हम आज से करेंगे। आज हम बात करेंगे नेगेटिव ग्रेडिंग के ऊपर, और SMSF में जो एक पाबंदी लगा दी उन्होंने कि लोन नहीं ले सकते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए ऊपर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अपना पेन एंड पेपर खोल लीजिए, जो भी प्रश्न हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं या अभी भी मुझे लिख सकते हैं। मेरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 0421-590-791, 0421-590-791। और हमारे जो फोरम है दर्पण रेडियो का व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पर भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो आज की कुछ रूपरेखा हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कोई और भी हम सेगमेंट शुरू करना चाहें, तो आप मुझे सुझाव दीजिए कि हम और क्या सेगमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे यंग लोग, नए माइग्रेंट आते हैं, जो शायद हमारे रेडियो प्रोग्राम को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो मदद करते हैं उनकी, तो कैसे मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे तो हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन आगे जाने के पहले हम सुनते हैं आज का विचार पूनम जी से।
2: आज का विचार बल्कि मन की संतुष्टता में है। जब आत्मा यह गहराई से अनुभव कर लेती है कि परमात्मा ने उसे जो दिया है वह अनमोल और पर्याप्त है, तभी जीवन में परम आनंद और असीम शांति की प्राप्ति होती है।
3: दोबारा से सुनते हैं, थोड़ा सा बीच में हिकअप हो गया था।
2: श्रोताओं, आज का विचार यह है, सच्ची खुशी बाहर की नश्वर वस्तुओं में नहीं मिलती, बल्कि मन की संतुष्टता में है। जब आत्मा यह गहराई से अनुभव कर लेती है कि परमात्मा ने उसे जो दिया है वह अनमोल और पर्याप्त है, तभी जीवन में परम आनंद और असीम शांति की प्राप्ति होती है।
3: तो श्रोताओं, आप कितने लोग ऐसे हैं जो शांति चाहते हैं, या आप दुनियादारी चाहते हैं,

0: तो श्रोताओं ये भजन मैथिली भाषा में था। हम चाहते हैं कि आप कृपया हमें बताइए कि क्या समझ में आया आपको, या आपने क्या पहली बार इसको सुना है, इस भाषा को सुना है, थोड़ा सा कमेंट डालिए। क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मुझे नहीं लगा था कि इतने बड़ा ये मैटर है, लेकिन लगता तो यही है।
1: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention the Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of the Open Radio.
2: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
3: आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारी वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं।
0: तो शशि जी,
4: जी यतेंद्र जी, बताएं
0: कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको कि आज हम पूरे दो घंटे में थोड़ा सा कम समय हम कम कर लेते हैं, हमारा टैक्स उसका हम सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। आज हम मिथिला के ऊपर पूरी बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी हो, कितनी रिच भाषा है, कितना रिच कल्चर है। इसका यूएन में टैग भी है, श्रोताओं की यूएन ने इसकी जो पेंटिंग वगैरह है उसके अलग से एक टैग बनाए, तो दैट्स सो गुड। तो उससे पहले कि हम आगे जाएँ, हम चाहें कि आप खुद बताएँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में, फिर मिथिला के संदर्भ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करिएगा।
4: जी अवश्य अवश्य। बहुत सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दूं मैं। मुझे वास्तविक रूप में गर्व की अनुभूति हो रही है आपके सामने में बैठकर और श्रोताओं से जुड़कर। मैं शिशिरेंदु कुमार झा हूँ मेरा नाम। पेशे से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेड एंड इनोवेशन हूँ। मैं एक लेखक हूँ जिसने चार पुस्तकें लिखी हैं, तीन अंग्रेजी भाषा में है और एक हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा की पुस्तक पूर्ण रूप से पद्य है। मैं हिंदू चैपलिन भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य और विशेष रूप से मिथिला, मैथिली और मैथिल समाज के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी निरंतर सक्रिय हूँ। जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं अपना योगदान अवश्य देता रहता हूँ या देना चाहता हूँ। तो पिछले कई वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए मेरा यह प्रयास है कि मिथिला, मैथिली और मैथिल समाज का एक सशक्त पहचान और साझा मंच मिले, जो कि अब तक इतना परिलक्षित नहीं था। इसी उद्देश्य से मैंने अपने साथियों के साथ सहयोग से एक मिथिला कल्चरल सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई।
0: सोसाइटी भी बना ली?
4: जी जी, ये पिछले साल 2025 में मिथिला कल्चरल सोसाइटी का नींव रखा गया। और
0: तो उसके कौन मेंबर बन सकते हैं?
4: इसमें कोई भी मेंबर बन सकते हैं, ये खुला हुआ मंच है। आप लोग आएँ, मिथिला की जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो कलाकृति है
0: जी,
4: उसमें सभी योगदान दें। और जो कोई भी मिथिला मैथिली और मैथिल के लिए योगदान देना चाहते हैं, उन सब के लिए खुला मंच है। $51 का एक छोटा सा फी है, जो आपको जीवन पर्यंत या आपको इस मंच का
0: क्या बात
4: मेंबर बना के रख सकता
0: है। तो अपना नंबर भी दे ही दो आप अभी से, जो लोग आपको मैं चाहता हूँ आज ही लोग मेंबर बने आपकी सोसाइटी।
4: अवश्य अवश्य जी, आप लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर लें, 0426-399-461। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, 0426-399-461।
0: चलिए, तो अब हम एक उस पर जाते हैं कि मिथिला आप रहे कहाँ हैं, जैसे कि एक ना जुड़ाव होता है
4: जी,
0: कि कैसे आप ये मिथिला में जाके, अभी तो आपने पढ़ाई करी होगी, मालूम दिल्ली से पढ़ाई करी क्या करा कैसे आप फिर मिथिला में वापस आए या मिथिला से आप शुरू से ही थे कि
4: बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरी पढ़ाई मेरा जन्म मधुबनी जिला में एक परसौनी गांव है
0: अच्छा
4: परसौनी गांव है
0: फिर तो आप प्योर
4: जी जी मैं विशुद्ध रूप से कोई भी थोड़ी सी मिलावट नहीं है तो मधुबनी जिला अंतर्गत एक परसौनी नाम का एक गांव है उसमें मेरा जन्म हुआ है और पालन पोषण मधुबनी से लेकर के जो जमशेदपुर जो पहले बिहार का ही पार्ट था और फिर बाद में मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक किया और फिर आईआईटी बॉम्बे से मैंने अपने परास्नातक की बीएचयू में रहते हुए मैंने एक छोटे से ग्रुप की स्थापना की थी जो मैथिल लोग जो भी स्टूडेंट मिथिला से आते थे वहाँ पर उनको अपना आइडेंटिटी खोजना चाहते थे क्योंकि बनारस एक ऐसा जगह है जहाँ पर सभी जगह से लोग आते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा मैंने ग्रुप बनाया और वो ग्रुप आज भी सक्रिय है इस बात का गर्व है मुझे और मैंने अपने जगहों पे देखा है कि किस प्रकार मिथिला का जो सभ्यता और संस्कृति रही है कितना महान रहा है और जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो लोग जानते ही नहीं हैं
0: बिल्कुल
4: और जब मैं पहली बार यहाँ
0: बिल्कुल यही एहसास मुझे भी हुआ
4: जी
0: इतना रिच कल्चर है
4: जी
0: एक प्रश्न पूछ लूं बीच
4: जी जी अवश्य अवश्य
0: आपने बोला मिथिला से आए मिथिला क्या ज्योग्राफिकली थोड़ा सा बताइए
4: हाँ तो मिथिला देखिए मिथिला उस संपूर्ण भूभाग को बोलते हैं जहाँ मैथिली बोली जाती है और मैथिली की जब हम बात करते हैं तो मैथिली सदियों पुरानी भाषा है माँ जानकी का भी नाम एक मैथिली है
0: जी
4: तो हम अपने आप को माँ जानकी का संतान मानते हैं
0: हाँ, हाँ, वो
4: और उस तरह से जो भी भूभाग है जैसे 8-10
0: ये नेपाल तक जाता है
4: जी 8-10 जिला भारत में है और नेपाल का जो तराई का क्षेत्र है जो बिहार के उत्तरी भाग से जुड़ता है उस सारे क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है और माता जानकी का सबसे बड़ा मंदिर नेपाल जनकपुर में जी तो ये सारा भूभाग
0: तो मैथिली इसका है। जो भूभाग अभी जैसे आज की करंट फॉर्म में
4: जी
0: कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं क्या एरिया है
4: इसमें
0: अब जैसे मान लो मैं कहूँ कि पटना
4: हाँ।
0: नॉर्मली मिथिला का आशय संभव बिहार से हो जाता है
4: जी
0: पूरा बिहार इसमें नहीं है इफ आई एम नॉट रॉन्ग
4: बिल्कुल सही है तो देखिए जब हम बिहार बोलते हैं तो बिहार में भोजपुरी बोली जाती है मगही बोली जाती है बज्जिका हाँ। बोली जाती हाँ। है अंगिका बोली जाती है और बहुत सारी भाषाएं हैं बिहार अपने आप में बहुत बड़ा बहुत ही रिच एक प्रदेश है भाषा की दृष्टि से कला की दृष्टि से उसमें मिथिला एक भूभाग है जहाँ जो समावेशित करता है मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर सीतामढ़ी शिवहर सुपौल सहरसा मतलब बहुत सारे ये सारे जिला हैं जो मिथिला को मिथिला बनाती है वहाँ हाँ। के लोग मैथिली बोलते हैं
0: हाँ।
4: कुछ लोग अररिया कुछ लोग बोलते हैं कि पूर्णिया मुजफ्फरपुर ये सारे हैं बट जो जहाँ पे शुद्ध मैथिली बोली जाती है मैं जब भाषा की शुद्धता आप जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते जाएंगे थोड़ा सा उसमें मिलावट होते जाता है उत्तर के जितने जिला हैं उसमें मैथिली अधिक शुद्ध बोली जाती है
0: अच्छा
4: जी
0: तो ये अभी जैसे नेपाल में जनकपुर जगह है वहाँ पे वो नेपाली बोलते हैं या मिथिला बोलते हैं
4: नहीं वो मैथिली बोलते हैं और एक अमेजिंग बात यह है कि नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी बोलने वाली भाषा मैथिली है तो इस बात का भी हमें गर्व है कि मैथिली एक छोटे से भूभाग तक संकुचित नहीं है बल्कि एक संपूर्ण देश की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है तो ये बहुत ही
0: काफ़ी अगर वैसे हम नंबर में काउंट करें तो
4: जी
0: कम से कम 2-4 करोड़ तो बोलते हैं
4: पूरे विश्व में जब हम केवल भारत की बात करते हैं तो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास मैथिल हैं
0: मैथिल अच्छा
4: जी, और बाहर में उसी प्रोपोर्शन में मुझे लग रहा है कि कम से कम 60-70 लाख तो होंगे बाहर या उससे भी अधिक हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो लेकिन मैं अपने अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ कि इतने तो होंगे तो
0: हमारी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा होंगे
4: जी जी
0: हमारी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन पे हमें गर्व होना चाहिए हमें ऐसा एक्चुअली मजाक नहीं उड़ाना चाहिए लेकिन तो जो मैथिली भाषा का जितना ये तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी जो स्क्रिप्ट है
4: जी
0: वो हिंदी जैसी नहीं है
4: नहीं
0: तो जो जैसे हम लिखते हैं तो बोलचाल में तो हिंदी जैसी लग रही है
4: जी
0: लेकिन इसका जो तो स्क्रिप्ट के बारे में बताइए
4: देखिए वैसे जब हम इतिहास की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि मैथिली का जो की जो लिपि है जिसको तिरहुत लिपि बोलते हैं ये कहीं पर हजारवीं सेंचुरी में हजारवीं शताब्दी में शुरू हुई तो लगभग 1000 पुरानी ये भाषा है जिससे मैं
0: 1000 साल पुरानी सो जरा नोट कर लीजिए 1000 साल बहुत बड़ा समय होता है
4: जिससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये भाषा बहुत ही पुरानी है माता जानकी के समय
0: वही तो मैं कह रहा हूँ exactly.
4: और कहीं पर भी ये मैं इस कालखंड को कम करने के लिए तैयार नहीं हूँ हमारी भाषा जो है वो एक पुरानी भाषा प्राचीन भाषा है और सबसे बड़ी बात है कि हाल तक ये भाषा और लिपि जीवित थी अंग्रेज जो विचारक हैं मिस्टर ग्रियर्सन उन्होंने इसको एक पूर्ण भाषा के रूप में इसको एक स्थान दिया था
0: अच्छा
4: जो 1920 के आसपास यहाँ पर धीरे धीरे
0: पूर्ण भाषा का मतलब
4: पूर्ण भाषा क्योंकि इसमें इसकी अपनी लिपि है इसका अपना व्याकरण है इसके अपने बहुत
0: अच्छा अच्छा
4: अपने लिटरेचर हैं अपने जो जो जो आपके एक भाषा तभी भाषा समृद्ध हो सकती है जब उसकी अपनी लिटरेचर हो और मैथिली की अपनी लिटरेचर हुआ करती है जो अब धीरे धीरे दिखती नहीं है पर पुराने समय में जो जो महान हमारे पहले नहीं हमारे महान कवि जिसको बोलेंगे वो विद्यापति ने शुरू की और वहाँ से ये भाषा ने भाषा समाज का एक अभिन्न अंग बन गई और इसका जो संस्कृति है वो धीरे धीरे करके पूरी बिहार में फैला पूरे भारत में फैला इवन जो कुछ बॉलीवुड फिल्म भी जो शुरू के बने हुए हैं उसमें भी मैथिली और मिथिला के विषय में बताया गया है तो पूरे भारत में मिथिला के संस्कृति के विषय में लोग जानते थे जो कालखंड में धीरे धीरे करके कम हो गई क्योंकि लोगों ने अपनी भाषा छोड़ दी भाषा को हिंदी ने रिप्लेस कर दिया तिरहुत लिपि को देवनागरी ने रिप्लेस कर दिया
0: तो क्या क्या शब्द बोला था आपने
4: तिरहुत लिपि
0: तिरहुत लिपि जी तो वो लिपि तो ये जो लिपि है मैं जो खुद कल मैं जब प्रोग्राम के बारे में तैयारी कर रहा था तो ये बंगाल उड़ीसा के उससे
4: बंगाल असमिया बंगाल असामीज और
0: उड़ीसा इन तीनों से मिलके बनाई है
4: नहीं ये तीनों भाषा इसी लिपि से निकली हुई
0: ओ माय गॉड क्या गलती कर दी मैंने
4: जी और वो संस्कृति भी देखने को मिलती है वो संस्कृति भी आप
0: संस्कृत में सारे जो आपका व्याकरण होगा
4: संस्कृति कल्चर के
0: बारे में अच्छा सॉरी जी
4: मैं उसकी बात कर रहा हूँ जैसे जो कुछ रिचुअल्स हमारे यहाँ में मिथिला में होता है कुछ उसी से मिलता जुलता रिचुअल बंगाली में भी देखने को मिलता है उसी से मिलता जुलता रिचुअल कुछ असामी में भी देखने को मिलता है तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सारे एक ही संस्कृति के हिस्सा रहे हैं अब समय के हिसाब से सभी भाषाएं अलग हो गई और सब अपने आप में एक महान भाषा है तो
0: नहीं एक भाषा से जो मेरा एक क्यों मैंने इस प्रोग्राम को बहुत वो दिया है कि भाषा संस्कृति से बहुत कुछ जुड़ा होता है
4: जी
0: अब जैसे कि आपने नॉर्मल सुना होगा कि हम इंग्लिश में यू करके बात करते हैं
4: सही बात
0: कोई भी बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जब हम हिंदी में बात करते हैं तो आप करके बात करते हैं या तुम करके बात करते हैं वो छोटे बड़े का होता है तो इससे फिर क्या आया हमारी संस्कृति हमारी कल्चर कैसे हम बड़ों का सम्मान करते हैं ये फर्क होता है तो ऐसे ही कुछ मैथिली में भी होना चाहिए
4: मैथिली में जैसे मैंने बताया जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं आपने नेपाल से शुरू किया फिर बिहार में इंटर किया आपने मधुबनी में इंटर किया फिर नीचे दरभंगा आया और इस तरह से जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ जाते हैं तो भाषा की शुद्धता और
0: कम हो जाती है
4: हाँ कम हो जाती है तो वहाँ हम भी बड़ों का सम्मान करते हैं और उनको हम उनके आदर सूचक शब्द हमारे यहाँ अहाँ है जैसे हम सबको तुम नहीं बोल सकते वहाँ पर बड़ों का सम्मान सबसे ऊपर रखा गया है तो जैसे बड़े भाई हुए बड़े जैसे पिताजी हुए या फिर दादाजी हुए तो इन सबको हम अहाँ बोल के संबोधित करते हैं अहाँ के नाचिए अहाँ की करे छे
0: की करे छे
4: अपने बच्चे अपने इवन अपने बच्चों को भी हम अपने घर पे भी सभी को अहां करके ही बातें करते हैं मेरे अच्छा। मेरी माताजी ने मुझे कभी तुम नहीं कहा
0: अच्छा
4: जी तो यहां पर सम्मान सबका है मिथिला में एक एक मिथिला मैथिली एक भाषा है
0: आप छोटे हैं बड़े हैं
4: सबको आप अहां करके बातें करते हैं लेकिन वही जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो भाषा में थोड़ी सी थोड़ा सा मिलावट होना शुरू होता है फिर वहां पर तू आ जाता है तुम आ जाते हैं तो वहां पर फिर लोगों को फिर तू करके संबोधित किया जाता है लेकिन इसके इसके कोर में यही है कि हम हर हम हमसे बड़ा हो या छोटा हो सबका हम समान रूप से सम्मान करते हैं
0: तो आपने मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ उसके बाद में छोटा सा ब्रेक करते हैं आज श्रोताओ सारे के सारे हमारे गाने भी मैथिली में होने वाले हैं अच्छा तो सबका सम्मान करते हैं तो आपकी माँ आपको अहां करके बुलाते हैं
4: जी जी
0: तो आप छोटे हैं या बड़े हैं इससे
4: नहीं मैं नहीं। दूसरे नंबर पे हूं मेरे बड़े नहीं,
0: भाई नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप छोटे हैं किसी से छोटे भी
4: हाँ, हैं हाँ, हाँ।
0: आप मां से तो छोटे हैं
4: जी जी जी अवश्य
0: तो वो भी आपको सम्मान से बुला रहे हैं ये आप कहना चाहते हैं
4: जी जी इवन मैं अभी अपने छोटे भाइयों से अहां करके ही बातें करता हूं
0: तो वो सम्मान इरिस्पेक्टिव की आपकी उम्र कितनी है
4: हां हां ये सम्मान इसलिए है क्योंकि आप समझते हैं मिथिला हमेशा से चेतना का केंद्र रहा है
0: जी
4: और वहां की चेतना बहुत ही प्रगल्भ रही है बहुत ही ऊंची रही है उसमें क्या है कि आपने राजा जनक का नाम सुना होगा
0: जी जी
4: वहां से हमारी चेतना जो है राजा जनक अपने आप में विदेह कहा जाता है उनको कि शरीर रहित है वो मतलब विशुद्ध चेतना है विशुद्ध चेतना है तो हमारे यहाँ चेतना इतनी प्रगाढ़ है कि हम सामने वाले को भी दे समझते हैं कि ये वही चेतना है वही
0: क्या बात है?
4: वही महान सोल है इस तरह से हम समझ सकते हैं इस चीज को
0: तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि
4: जी जी अवश्य

0: Karimasas.
1: Every Sunday listen to the Hindi show 98.5 FM Radio 2000.
2: Har Ravi Pas suniye dat pan Hindi kaikam 98.5 FM par. Subah 9 se 11 baje tak.
3: Sushil ji, ye jo humne abhi gana sunaya tha, Rafi ji ka gana tha. Aap iske bare mein thoda sa bataiye pehle to.
4: ये 1960 में एक फिल्म आई थी परम धाम, उसमें इस मैथिली गाने को गाने, ये मैथिली में एक भजन है जो विद्यापति के द्वारा लिखा हुआ है।
3: अच्छा अच्छा।
4: और इसी गाने को उन्होंने इतने सुंदर आवाज़ में प्रस्तुत किया इस फिल्म में, बहुत ही सुहावना है, तो इसलिए मुझे मेरे काफ़ी कर्णप्रिय है।
3: अच्छा।
4: इसको थोड़ा सा हम अपनी आंखें बंद करके इसको अनुभव करने का प्रयास करें तो
3: एक्चुअली हमारी ऋचा जी ने लिखा था, फरमाइश है यदि संभव हो तो विद्यापति का पद सुनवा दीजिए, पिया मोरे बालक।
4: प्रिया पिया,
3: आप तो गा भी सकते हो, तो आप गा सकते हो क्या?
4: मैं इतना बड़ा मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा दो लाइन गाने का।
3: हाँ।
4: तो जब भी आप को लगे कि
3: तो हम एक काम करते हैं, हमारे जो संदेश आए हैं, मैसेज आए हैं हमारे फोरम पे, उसको हम सुना देते हैं। राजेश पांडे जी कहते हैं गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, नाइस न्यूज, धन्यवाद राजेश जी। अमित श्रीवास्तव जी कहते हैं वेलकम शशिर जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग मोर ऑफ मिथिलाज रिच कल्चर। ऋचा श्रीवास्तव जी कहती हैं शशिर जी से मिथिला के बारे में जानने को उत्सुक हैं, सीता जी मिथिला से थी और मेरी सासू माँ मिथिला से थी, मुझे मैथिली गीत गाने का सौभाग्य प्राप्त है। हो सकता है ऋचा जी से हम एक गाना एक आवाज़ सुनते हैं
4: कभी।
3: ऋचा जी तैयार हो जाइएगा, आपको मैं फ़ोन करने वाला हूँ थोड़ी देर में, और आपकी आवाज़ में मिथिला का कोई गीत सुनने चाहेंगे हमारे श्रोता भी। फिर राजीव निगम जी कहते हैं नमस्कार जी, नाइस दैट द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ नेगेटिव गियरिंग इज डिस्कस, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ कवर ऑन कैपिटल गेंस टैक्स ऑन सेलिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ बिल्कुल करते हैं बात राजीव जी, अभी हम इसको क्योंकि बहुत एंग्जाइटी हो रही है लोगों को, क्या क्या नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में, क्योंकि लक्ष्मी माता को इग्नोर नहीं कर सकते। सीता जी, सीता जी
4: लक्ष्मी जी का ही रूप है।
3: एग्जैक्टली, तो हम जो है ना उनके एक दूसरे रूप को भी लेंगे। प्रदीप कुमार जी लिखते हैं कार्यक्रम का शुभारम्भ मधुर भजन। अच्छा जी फिर से लिखती है नॉट श्योर इफ सिंगर इज दीपाली सहाय, जो पहला वाला हमारा जो भजन था उनका जो सिंगर कौन थे?
4: हाँ ये उन्हीं का
3: दीपाली सहाय का। अच्छा, विद्यापति के भजन मिथिला में बहुत प्रसिद्ध है, मैंने सुना और गाया भी है। तो अभी ऋचा जी थोड़ी देर में आपको मैं फ़ोन करने वाला हूँ। प्रदीप जी लिखते हैं शिशिर जी बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व तो लगता है। हाँ बिल्कुल हैं, तो आप मिलेंगे उनसे तो और भी ज़्यादा होंगे, उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन उतने विनम्र हैं उतने आपको मालूम ही पड़ेगा। जब आप शशि जी से मिलेंगे तो शायद आप एहसास नहीं होगा। अमित श्रीवास्तव जी लिखते हैं नाइस एक्सप्लेनेशन सो फार शशि जी। तो अब हम जाते हैं शशि जी कि जो इसकी जो लिपि है
4: जी,
3: वो जब आपने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था कि इसकी लिपि भी अलग है, तो मैं थोड़ा सा बैकफॉर्ड, जैसे भोजपुरी हिंदी के तरीके से लिखते हैं,
4: हाँ,
3: लेकिन
4: हाँ,
3: वो ऐसा नहीं है
4: जी, जी।
3: तो ये लिपि के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसका कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ। अब जैसे मान लो ये जनक जी ने, बाद में एक और मैंने जब मैं रिसर्च करा था, जनक केवल एक नहीं है,
4: हाँ,
3: कभी काफ़ी लोग उसमें मिक्स कर जाते हैं
4: जी।
3: जो जनक सीता जी के पिता थे
4: जी,
3: वो अलग हैं और भी कहते हैं जो, क्योंकि जो जनक के शायद दादा रहे होंगे
4: जी,
3: वो उनका नाम भी कहीं जनक था, तो जनक एक प्रादुर्भाव हो गया कि जो एक उस ऊंचाई को पाता है उसको जनक कहने लगते हैं।
4: तो
3: मैं लग गलत है, सही है?
4: नहीं, आप बहुत ही नज़दीक हैं। जनक का मतलब होता है पिता, जनक का मतलब होता है वो जो बनाए, जो जन्म दे
3: जी,
4: और आपने बिल्कुल सही कहा कि सीता जी के जो पिताजी थे वो उनको जनक का दर्जा प्राप्त था और इस तरह से जो अपनी चेतना में एक स्तर से ऊपर उठ जाते थे उनको जनक बोलते थे।
3: अच्छा,
4: इनके पिता का नाम शिरध्वज था। शिरध्वज और मकरध्वज दो भाई थे। तो सीता जी के पिताजी का नाम शिरध्वज था, सीता जी और उर्मिला जी उनकी पुत्री थी, मांडवी जी और श्रुतकृति जी मकरध्वज की पुत्री थी। तो ये दोनों भाई थे और इस तरह से जो है सीता जी को हम लोग बहुत सम्मान देते हैं। और
3: ये तो लगता है न जाने कितना जानने को मिलेगा। तो जनक उनकी उपाधि थी, ना कि उनका रियली नाम था। तो जनक एक उपाधि है राजा दैन की। तो चूंकि अष्टावक्र ने जो जनक का हुआ था तो वो अलग जनक थे
4: ना, नहीं
3: वो सीता वाले
4: ये देखिए, क्योंकि इस बात को थोड़ा समझना पड़े चाहिए हम लोगों को कि जब हम जनक की बात करते हैं तो जनक शरीर से विभिन्न हो जाते हैं, शरीर से भिन्न हो जाते हैं।
3: अच्छा।
4: तो यदि शरीर रहते हुए भी वो कोई दूसरे व्यक्ति थे लेकिन वो फिर भी जनक थे। और जिस जनक जो जहाँ पर अष्टावक्र जी आए थे, अष्टावक्र ने राजा जनक को सबसे पहले गीता का ज्ञान दिया था। लोग शायद ये थोड़ा समझने में कठिनाई हो कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन अष्टावक्र की अपनी गीता है।
3: हाँ,
4: और वहाँ पर राजा जनक ने प्रश्न के बहुत सारे प्रश्न थे जिसका जो उत्तर अष्टावक्र ने दिया। और उनका जो प्रथम श्लोक ही है, अष्टावक्र का प्रथम श्लोक, सबसे पहले गीता का ज्ञान दिया था। लोग

0: शब्द तेरा से कि तुम तो कुछ हो ही नहीं
1: अष्टावक्का जो मैंने जितना समझा है वो बिल्कुल सीधा है
0: हाँ
1: कोई लाग लपेट नहीं कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं सीधा ये है बूम
0: जी
1: आपको समझ जाए लेना है लीजिए नहीं लेना नहीं लीजिए कोई उसमें आडंबर नहीं है
0: एकदम सही बात
1: बिल्कुल प्योर है मैं सही बोल रहा हूँ
0: नहीं एकदम सही है एकदम सही है तो ये
1: अष्टावक्र का पढ़ने के बाद में आदमी अगर आपने उनकी पूरी वो गीता पढ़ ली
0: हाँ।
1: तो फिर आपके सारे कंसेप्ट फिर आप जो थे वो रह नहीं पाओगे अगर आपने पढ़ी ली पूरी
0: जी
1: ऐसे तो अब फिर वापस आ जाते हैं लिपि के ऊपर
0: जी
1: लिपि में ये हिंदी जैसी नहीं है
0: नहीं
1: ठीक है ना
0: देवनागरी
1: अब आप यहाँ से शुरू करें
0: देवनागरी नहीं है देवनागरी संस्कृत की भाषा संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि है लेकिन वहाँ एक जो अपने इतिहासकार रहे हैं उनका ये मानना है कि मैथिली बंगाली हिंदी असमिया ये सारे जो हैं इंडो आर्यन फैमिली की भाषा है
1: इंडो आर्यन
0: आर्यन फैमिली की भाषा अच्छा। है जिसका जिसका का पेरेंट भाषा जो है वो संस्कृत है संस्कृत
1: अच्छा
0: और संस्कृत से ही सारे भाषाओं का उदय हुआ है तो मैथिली का विकास पूर्वी भारत की प्राचीन मगधी और या फिर मगधी का थोड़ा आप भ्रंश ले लें उस तरह की परंपराओं से हुआ जैसा कि इतिहासकार समझते हैं और मैंने जैसे प्रारंभ में ही बताया कि मैं इस इतिहासकारों से थोड़ा सा मेरा मत अलग है मैं मानता हूँ कि मैथिली का की जो शुरुआत है वो माता जानकी से हुई और वहीं से हमारी लिपि भी उतनी पुरानी है उतनी ही प्रगाढ़ है और उतनी ही उद्यत है मतलब उतनी ही रिच है वो तो इसलिए मैं मेरा थोड़ा सा मत अलग है लेकिन इतिहासकारों का ये कहना है कि सारे मध्यकाल में 1000 साल के आसपास इन सब का उदय हुआ और वहीं से भाषा अपने आप में रिच होती चली गई जिसमें लिटरेचर जुड़ते गए सब ने अपना व्याकरण अडॉप्ट किया और इस तरह सारी भाषाएँ बढ़ती चली गई तो अगर मैं बोलूं कि इसकी जड़ जो है मोस्टली अगर हम दो तरह की लिपि होती थी पहले ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि तो ये जो है इसकी जड़ जो है ब्राह्मी लिपि से है ब्राह्मी लिपि को आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में गुप्त काल में एक लिपि हुआ करती थी सिद्धम लिपि वहाँ से ब्राह्मी लिपि का प्रादुर्भाव हुआ था और बाद में ब्राह्मी लिपि से फिर तिरहुत लिपि बनी इतिहासकार इसका इस तरह से वर्णन करते हैं तो सिद्धम लिपि ब्राह्मी लिपि तिरहुत लिपि और इस तरह से फिर तिरहुत लिपि अपने जो फॉर्म है उसका उस फॉर्म में आई तो इस तरह से लिपि का जो है ये हुआ चलन हुआ और इस तरह से लिपि बनी तिरहुत लिपि
1: तो देखने में ये लगती है जैसे उड़िया जैसी लगती है देखने में
0: इसके इसके 13 जो ये हैं 13 जो अक्षर हैं 13 अक्षर
1: 13 अक्षर हैं केवल
0: ये 13 नहीं अक्षर इसमें 55 हैं लेकिन इसके 13 अक्षर बंगाली के जो की जो लिपि है उससे एग्जैक्टली मैच करती है
1: अच्छा
0: और जैसे हिंदी में अगर हमें संयुक्त करना है तो दो अक्षरों को हम साथ में मिला सकते हैं लेकिन तिरहुत लिपि में क्या है कि यदि हम दो अक्षरों को मिलाना चाहें तो उसका एक नया फॉर्म बन जाता है वो याद रखना आवश्यक है जैसे नौ और दो को मिलाएं हिंदी में तो आधा नौ और पूरा दो लिखते हैं लेकिन वही अगर नौ और दो को हम तिरहुत लिपि में मिलाएं तो एक नई प्रकार का फॉर्म बन जाता है वो
1: ओके
0: तो जो तिरहुत लिपि लिखना जानते हैं जैसे मैंने भी यहाँ आकर सीखा कुछ लोग हैं बिहार में जो सिखाते हैं और मैंने और मेरी पत्नी ने यहाँ आने के बाद हमें लगा कि जब तक हम अपनी भाषा की लिपि नहीं जानेंगे तब तक हम न्याय नहीं कर सकते मिथिला के बारे में हम भले ही कितनी बातें कर लें कुछ भी बोल लें हमें अपनी भाषा नहीं लिखनी आती है तो इसीलिए हमने उन लोग मुझे अजय नाथ जी हैं या फिर शशिधर जी हैं इन सब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि इन लोगों ने एक मुहिम चला रखी है
1: अच्छा
0: कि लोग तिरहुत लिपि सीखें कि सभी ने भारत में तिरहुत लिपि लोग भूल चुके हैं तो मैंने भी सीखा अभी 2 साल पहले ही सीखा है और मैंने भी यहाँ पर सीखूँ मिथिलाक्षर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया तो इसमें कुछ लोग आए और कुछ बच्चे अभी भी उसमें पंजीकृत हैं जो लोग सीखना चाहते हैं
1: तो आप सिखा रहे हो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप मिथिला भाषा को लिखना और पढ़ना
0: सिखा रहा हूँ मैं
1: सिखा रहे हो बोलना भी
0: जी
1: तीनों
0: जी
1: तो अब शायद एक बार नंबर और ही दे दीजिए अब आपके पास फोन वाकई में आएंगे
0: हाँ तो ये

0: ये बिल्कुल ही फ्री है, हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं क्योंकि।
1: तो आपकी क्लासेस होती हैं यहाँ पे कहीं आप बैठते हो?
0: हम ऑनलाइन क्लासेस ही लेते हैं, ऑनलाइन ही लेते हैं। अच्छा। और जो कोई भी में यह भाषा सीखने में, लिपि सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0426-399-461।
1: और ये श्रोताओ, मुफ्त की सेवा है। मैं इसको मुफ्त नहीं कहूँगा, इसमें दूसरा कोई वर्ड होना चाहिए, वो अभी ढूंढ के निकालते हैं। लेकिन ये ऐसी अमूल है जिसको कहते हैं, का कोई मूल नहीं है अगर आप सीखना चाहते हैं। एक दूसरा और तरीका मैं बता सकता हूँ, सिंपल वाला। कोई मिथिला की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ले लो तो वो फिर जो वो ही बोलती हो तो आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा।
0: उसमें यह है कि जैसा मैंने बताया कि भाषा तो बोल लेते हैं लोग, हाँ, लेकिन लिख नहीं पाते हैं।
1: हाँ,
0: लिखने के लिए आपको सीखना आवश्यक।
1: जी जी जी जी, जी।
0: इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप सीखें भाषा को।
1: जी, आप जो फिर से मैं एक बात में कह रहा हूँ कि जब आप भाषा सीखोगे तो उसके साथ में और न जाने क्या क्या सीखोगे आप।
0: जी, उसके
1: अब नया संसार खुल जाएगा।
0: पूरा पूरा का पूरा, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जब मैं सुनता हूँ तो मुझे अपना अपना बचपन याद आ जाता है।
1: हाँ, अच्छा, जब आप छोटे होंगे
0: और माँ दादी ये सब, हाँ, हमारे दादाजी ये सब उस तरह का शब्द उपयोग करते थे और हमें वो सारे शब्द अब सुनने को नहीं मिलते। वो हाँ, सारे शब्द चले गए।
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत ही लगता है कि
1: अभी मैं इस चीज़ को एक्चुअली मैं सच नहीं कर पाया, जो मोदी गवर्नमेंट ने एक पूरा वो चलाया हुआ कि सारी भाषाओं को वापस जीवित करना है।
0: हाँ हाँ जी,
1: एक उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
0: जी हाँ जी हाँ, 2014 में ये सौभाग्य मिला। मैं 2004 में तो सबसे पहले इसको अनुच्छेद जो अपना 18 अनुच्छेद 18 में इसको स्थान दिया गया।
1: हाँ,
0: और पार्लियामेंट में इसको बकायदा भारतीय संविधान भी, हाँ, भारतीय संविधान इस भाषा में भी बना जो अभी हाल में रिलीज हुआ है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: 2014 में यूनिकोड स्टैंडर्ड में भी इसको स्थान मिला। और अभी इसके जो भी कोई मिथिलाक्षर या तिरुत लिपि में कुछ डेवलप करना चाहते हैं, उन सभी मेरे आईटी प्रोफेशनल वाले भाइयों को ये सलाह है, यदि कभी कुछ किसी तरह का कोई इंटरेस्ट हो इस फील्ड में कुछ करने का, कृपा करके संपर्क करें। और वो कर सकते हैं तिरुत लिपि में भी, और वो उपलब्ध है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो ये जो लिपि की अगर आप बात करें तो जैसे एक छोटी सी सलाह है या छोटा सा पॉइंट है
0: जी, अवश्य,
1: कि जैसे कि हम मैसेज लिखते हैं, हाँ, अपना इसमें, हाँ, अपना आईफोन में मैसेज लिखा, राइट, तो इसमें है क्या वो?
0: नहीं, अभी तक होगा शायद, क्योंकि मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। मैंने उसमें देवनागरी में आ जाता है अगर आप वो लिखें।
1: हाँ, देवनागरी में आ जाता है,
0: देवनागरी में आ जाता है, लेकिन ABC2 जैसा एक होता है ना कि आप इंग्लिश में टाइप करते हैं और कन्वर्ट हो जाए, जो जिसको ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं, तो देवनागरी में ट्रांसलिटरेट हो जाता है लेकिन तिरुहत लिपि में नहीं हो पाता है वो।
1: हाँ,
0: तो वो नहीं
1: वो
0: है,
1: वो भी आप एक मेरी तरफ से एक मुफ्त की सलाह है।
0: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: उससे फिर क्या ना, यंग लड़के लड़कियां जुड़ेंगे और वो, हाँ, फिर उसको आगे लेंगे कि भाई हम लिख सकते हैं।
0: यदि होगी तो मुझे नहीं, आप लोग हमें बताएं अगर ऐसा कोई ऐसी कुछ,
1: क्योंकि आप IT वाले हैं, AI वाले हैं
0: जी,
1: तो आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं, आप बना के भेज भी सकते हैं। इनका कोई सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम होगा छोटा सा जो कर सकते हैं। तो श्रोताओ, कैसा लग रहा आपको प्रोग्राम, ये जो मैथिली भाषा में हमारा जो कल्चर है, और इसके कुछ बोलने वाले हैं, अगर कोई आप मुझे फ़ोन करना चाहें, इसके बारे में कुछ आप इनपुट देना चाहते हैं, कृपया मुझे फ़ोन करिए। मेरा नंबर है 0421-590-791 पे, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो फोरम है उस पर भी लिख सकते हैं। मैं अभी चाहता हूं कि कुछ लोगों को और इसमें इन्वॉल्व करा जाए।
0: जी।
1: उससे जाने के पहले हम एक छोटा सा गाना भी सुनते हैं।

0: सुशी
1: ये आपने जो गाना हमें ये दिया है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से
2: ये भी विद्यापति का ही एक पद है और बहुत ही एक प्रचलित कहानी है कि भगवान शिव स्वयं विद्यापति के यहाँ निवास करने आए थे उनके उनके
1: तो विद्यापति बारे कई बार क्योंकि रचा जनी है विद्यापति के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए फिर
2: विद्यापति लोग बोलते हैं कि 13वीं 14वीं शताब्दी के एक महान कवि रहे हैं जिनका जिन्होंने जो अपना जो प्रेम के ऊपर में समर्पण के ऊपर में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं
1: अच्छा
2: और जैसे कि पहले बात कर रहे थे बंगालीज भी बोलते हैं कि विद्यापति उनके आदि कवि हैं मैथिली में हम उनको मैथिल कोकिल बोलते हैं
1: अच्छा
2: तो और विद्यापति के लिए एक फेमस है कि उनके यहाँ भगवान शिव स्वयं आए थे उनके यहाँ उनका सेवा करने के लिए आए थे उनकी पद उनका पद सुनने के लिए उनका सेवा करते थे वो और इनको पता नहीं था विद्यापति जी को पता नहीं था कि वो भगवान शिव स्वयं है तो एक बार वो जा रहे थे इसी तरह किसी राजा ने बुलावा भेजा चले गए वो अपना और पीछे पीछे उनके उगना जी चल रहे थे उनको उनके नौकर का नाम उगना था शिव जी जो आए थे वो नौकर की तरह आए थे और उन्होंने अपना नाम रखा उगना तो उनको बहुत प्यास लग गई जंगल में और जंगल में इतनी प्यास लग गई कि वो समझ मतलब अब लग रहा था कि प्राण अब चला जाएगा तब चला जाएगा तो वहाँ पर उगना ने बोला कि मैं पानी जल लेकर के आता हूँ और जल कहीं आसपास था नहीं तो गए और पीछे में अपना जटा खोला और गंगा जल लेकर के
1: ले आए अच्छा
2: तो उन्होंने विद्यापति को पीने के लिए दिया और विद्यापति को लगा कि ये तो साधारण जल नहीं है उनकी उनका एक पद है गंगा जी के ऊपर में अंत अपने शरीर छोड़ने से पहले वो गंगा जी के किनारे रहते थे इसलिए वो गंगा गंगा को इतना जानते थे उनके उनका जो जल के जल था उसका स्वाद उनको पता था कि गंगा का जल है तो उन्होंने उगना को बोला कि ये साधारण जल नहीं ये गंगा का पानी है तुम बताओ कौन हो तो फिर जिद पर अड़ गए और बोले कि नहीं आपको बताना पड़ेगा अब हठ में भक्त भक्त के हठ में भगवान शिव भी जो हैं अपना लाचार हो गए उन्होंने फिर अपना साक्षात रूप दिखाया और फिर उनको एक शर्त रखी कि आप ये बात किसी को
1: बताएंगे नहीं
2: लेकिन जो विध होता है जो विधि होता है आपको हाथ पकड़ के करवाता है उनकी पत्नी को पता नहीं था विद्यापति के पत्नी को और उन्होंने एक अनादर कर दिया भगवान शिव का और विद्यापति ने उनको रोका कि ये साक्षात शिव जैसे ही बोलने गए वो अंतर्धान हो गए उसके मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ ये प्रसंग बोलते हुए क्योंकि उसके बाद वो भटकते रहे खोजते रहे शंकर भगवान को
1: लेकिन
2: मिले नहीं तो ये हम लोगों ने पिछले बार मिथिला महोत्सव किया था उसी में हमारे छोटे भाई की तरह हैं चंद्रशेखर जी अविनाश जी इन दोनों ने इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया था
1: अच्छा अच्छा
2: तो ये गाना चंद्रशेखर जी ने स्वयं गाया
1: तो आप भावुक हो गए काफ़ी इस समय एक श्रोता हमारा जो भजन एक गाने के बाद में जो हम सुनाते हैं वो सुनिए पहले
3: The complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters, authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: श्रोता हुआ मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऋचा जी को एक फ़ोन से बात करूँ तो ऋचा जी आप अगर सुन रही हैं तो या तो आप मुझे फ़ोन करिएगा और नहीं तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ